जय श्री हरि। आज मैं आपको अचला एकादशी की महिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। अचला एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अचला एकादशी का व्रत करने से अनेकों अनेक फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति दिलाने वाला है अचला एकादशी का व्रत। अचला एकादशी का व्रत भूत प्रेत के टोने टोटकों से भी मुक्ति दिलाने वाला है।

प्राचीन काल में महीध्वज नामक महाप्रतापी महाधर्मात्मा राजा राज करता था। महीध्वज का छोटा भाई जिसका नाम था वज्रध्वज, वज्रध्वज बड़ा क्रूर था, अधर्मी किस्म का अन्यायी व्यक्ति था। दोनों भाइयों की विचारधाराएं विपरीत थी। वज्रध्वज अपने बड़े भाई महीध्वज से मन ही मन खार खाता था।

मन ही मन में खार खाता था, ये बात सारा राज्य जानता था। वज्रध्वज राज्य की प्रजा को सताता था, उन्हें कष्ट पहुंचाता था, जो महीध्वज को पसंद नहीं था। दोनों भाइयों में अक्सर तकरार होती रहती थी। एक दिन मौका पाकर धोखे से बड़े भाई महीध्वज को मार देता है और राजगद्दी पर

की आत्मा उसी जंगल में भटक रही थी और जिस पेड़ के नीचे गाड़ा गया था उसी पीपल के ऊपर वास करने लगी थी। उधर से आने जाने वाले को सताने लगी थी, तड़पाने लगी थी। दैव योग से एक दिन अपने शिष्यों के साथ उधर से धौम्य ऋषि निकल रहे थे। पीपल की शीतल छाया देख के थोड़ी देर विश्राम करने की सोचकर पीपल के नीचे बैठ जाते हैं।

सौम्य ऋषि का कोमल हृदय द्रवित हो जाता है ये जानकर कि एक महान धर्मात्मा राजा को धोखे से मार के यहाँ गाड़ दिया गया है। उसकी आत्मा भटक रही है। धौम्य ऋषि उस राजा की आत्मा को अपने तपोयोग के बल से नीचे उतार लेते हैं।

परिक्रमा का सारा वृत्तांत समझाते हैं और कहते हैं इस व्रत को करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाता है।

एफएम अध्यात्म ज्योतिमा अब अगाडि कार्यक्रम समर्पण नमस्कार आदरणीय श्रोता कार्यक्रम समर्पणमा म सभ्यता तिवारी यहाँलाई स्वागत गर्दछु।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: गड़बड़ गड़बड़ पेट गड़बड़ जब पेट गड़बड़ सब तिर हड़बड़।
2: कब्जियत गैस अपच ये समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिन भर को जीवन लाई अस्त व्यस्त बनाउँछन्। मैले धेरै उपाय अपनाए तर स्थायी राहत पाउन सकिन। अन्तत मैले रोजे एसआर लैक्स 16 प्राकृतिक तत्व को संयोजन ले बने को यो लैक्सेटिव ग्रैन्युल्स ले अब मेरो पेट लाई सहज बनाएको छ। बिहान को शुरुआत हल्का महसूस संग हुन्छ र दिन खुशी र शान्तिपूर्ण। एसआर लैक्स प्राकृतिक र भरपर्दो समाधान कब्जियत ग्यास अपच र अम्ल पित्त को लागि। मेक योर डे हैप्पी एंड जॉयफुल, पेट स्वस्थ जीवन सरल। एसआर लैक्स नजिकको फार्मेसी वा आयुर्वेदिक स्टोरमा उपलब्ध छ।
3: सम्पर्क 9808030007।
4: क्याप्टेन रेग्मीज फार्म हाउस।
5: हिमाली दृश्यको अवलोकन सँगै प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउनको लागि स्वच्छ अनि रमणीय स्थान
4: क्याप्टेन रेग्मीज फार्म हाउस,
5: पौराणिक नुवाकोट दरबार र बेलकोट गढी सँगै
4: काठमाडौँबाट मात्र 3 घण्टाको यात्रामा पुग्न सकिने।

0: झूले यहाँ सुंदर FM अध्यात्म ज्योति ज्योति।
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग
2: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
3: वो मलाई फ्रॉक
4: मलाई पनी सूट
5: वो
6: अनि मलाई

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

0: man or a lady can hide.
1: You can't kill him with tea.
2: कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है?
3: थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो।

0: ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी।
1: क्या क्या क्या?
2: जाने दुश्मन, समझ लूं ऐसी नहीं है तू, मगर जो मैंने समझा था वैसी भी नहीं है तू।

इतना तो मेरा दिल भी जानता जरूर है, कितनी तू मेरे पास है और कितनी तू दूर है।

0: हम कहाँ तुम कहाँ हम कहाँ ताल कहाँ सम कहाँ तुम कहाँ हम कहाँ तेरे कर तुम ना कर तुम तेरे कर तुम ना कर तुम हम तुम नजर हाथ की पाता लता हाथ पता पा मेरा कस करामत
1: ताते चिता ताते देता ताते चिता ताते देता थाई या थाई या थाई टकटक दूम टकटक दूम टकटक न्या

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: ¶¶

0: गोल्ड पैलेस, शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग,
2: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज, मलाई ट्रैक शूट चाहिए,
3: वो मलाई फ्रॉक,
4: मलाई पनी सूट,
5: वो
6: अनि मलाई

0: भोलि त्यहाँ त्यो फिल्म हेर्दाखेरि भोलि मानौ न
1: मिति गङ्गुदी मङ्स।

6 बजे। अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

मेहनत से एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए, आपको कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे से कथा सुन सके। और जब कथा सफल हुई है कि नहीं, आपको आनंद आया कि नहीं भाई, जब सबको आनंद आया, सफल हुई कथा, तो इन सब

और अब देखिए श्री राम चले गए थे, राज सिंहासन किसको मिला था? भरत जी को, सब कुछ उनका था। और श्री राम ने खुद कहा था कि मैं कह रहा हूं बैठ सिंहासन पर, यहां आज जो है वो तो है, दूसरों के पास जो है वो भी ले ले, लेकिन यहां उनको सब कुछ मिल गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो

था, माँ सीता को वनवास नहीं हुआ था और दशरथ जी ने साफ साफ कहा था कि राम के जाने के बाद भी जैसे रहना है वैसे रहना, यहाँ रहना है यहाँ रहना, पिता के घर रहना है पिता के घर रहना, जो मन वैसे। लेकिन वो फिर भी वनवास में

देखिए यहाँ पर भगवान के साथ रिश्ते में धैर्य नहीं है, सांसारिक रिश्तों में क्या ही मनुष्य धैर्य रखेगा। इंतजार की बात आए तो यहाँ पर मनुष्य ऐसा हो गया कि एक काम ना हो तो भगवान बदल ले। वहां शबरी माता ने कितना इंतजार किया, कितना धैर्य रखा, तो भक्त कह रहा है कि भक्ति में धैर्य हो तो ऐसा। तो श्री राम के जीवन से कोई भी पात्र उठाइए, कोई भी चरित्र उठाइए, वह आपको कुछ ना कुछ सीख दे रहा है। तो क्या

यहाँ ऐसे कितने भक्त हैं जो अगर ठाकुर जी मिल जाए, सच में मिल जाए हमेशा के लिए, तो संसार छोड़ सकते हैं। क्या बात है।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

तो कौन कौन है जो ये दृश्य आंखों के सामने ला रहा है? एक बार सोचिए, आप सबके पैर अपने आप नहीं उठे तो मेरा नाम बदल देना कि बस रास्ते से जा रहे और सामने से कोई काली कमली पहनकर आ रहा है।

मेरे हिसाब से आप ऑलमोस्ट सभी खड़े हो गए हैं, एक बार मेरे सब साथ नृत्य करेंगे, उठाओ पूरे पूरे हाथ, एकदम लंबे लंबे पीछे तक, मैं जैसा करूं वैसे करना है, एक साथ।

0: झूले यहाँ सुंदर रुंचा एफएम अध्यात्म ज्योति ज्योति।
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

सद्गुरु प्रवचन श्रृंखला अन्तर्गत एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन माला कार्यक्रम अमृत धारा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड।

अक्सर सम्मान के लिए दूरी की आवश्यकता पड़ती है। जो अपने हैं उनको हम ऐसे ले लेते हैं, अरे अपने तो आदमी है, उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। घर की मुर्गी दाल बराबर का है। जहां अपनापन होता है वहां ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अपने हैं हमारे हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उनकी बातों को नजरअंदाजा कर देते हैं। और जहां पर सम्मान होता है वहां अपनापन कम ही नजर आता है। देखिए सम्मान जहां होता है वहां दूरी भी बढ़ती है। मगर ये संत के, एक ज्ञानी के, सत्पुरुष के सानिध्य में ऐसा नहीं होता। वहां जितना आत्मीयता बढ़ने बढ़ता है, जितना नजदीक जाते हो उतना ही सम्मान भी बढ़ता है, जितना अपनापन होता उतना ही एक सम्मान भी, आदर भी, गौरव भी बढ़ता जाता। ऐसा ही घटित हुआ जनक के साथ। अष्टावक्र को देखते ही इनके मन में हुआ ये हमारे हैं और बड़े आदरणीय हैं। जब अपने हैं और आदरणीय हैं नहीं लगता है तो फिर उनसे सुनोगे कैसे, उनकी बातों को स्वीकार कैसे करोगे। और अध्यात्म एक ऐसा क्षेत्र है, एक अज्ञात की ओर ले जाने वाले क्षेत्र है। यहां तो कोई हाथ पकड़ के ले जाए हमें तभी पहुंच पाएंगे ना, इशारे से तो नहीं चलेगा। नक्शा कोई दे दे तुम चल के जाओ ऐसे नहीं चलेगा। कोई साथ जरूरत है, कोई दिखाने वाला जरूरत है, मार्गदर्शन करने वाले की बहुत आवश्यकता है। तो उन पर भरोसा तभी आएगा जब उन पर सम्मान है और अपनापन है, आत्मीयता है। और ये कोई करने वाली बात नहीं, ये हो जाता है। किसी को देखते आपके दिल में आत्मीयता अनुभव होने लगता है, किसी से मिलते ही एक सम्मान मन में जागता है, ये सहज ही होता है। अक्सर ज्ञानियों के, संतों के आसपास ही घटित होता ही। ऐसा ही जनक को भी हुआ। उन्होंने कहा मम प्रभु, मेरे प्रभु। धर्म क्या है पहले ये जाने। पुरुषार्थ में हमने कल बात करी थी, पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष तो चौथे लेवल पर, पहले तो धर्म अर्थ काम जाने फिर मोक्ष पर जाए। ऋति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह दी सत्य मक्रोधा। वृद्धि जिससे एक जीवन को एक लक्ष्य मिलता है, धृति का कोई अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, धृति को धृति ही कह सकते हैं। तुम्हारे भीतर कोई चीज ऐसी है जो आग है, हर काम में तुम्हें उसकी जरूरत पड़ती है, जानने के लिए करने के लिए भी जिसकी जरूरत है वो धृति है। और क्षमा माफ कर देना, सहनशीलता, दम
निग्रह करना अपने, जो मन में आया वो बोल देना नहीं, जो मन में आया वो कर देना नहीं, सोच समझ के करने की भी बुद्धि। इसको कहते हैं ईमानदारी, इंटेग्रिटी कहते हैं। ये सब धर्मों के लक्षण जितने भी बताए गए हैं ये जीवन में जरूरी है, इसके बिना जीवन चल नहीं सकता। जिस मात्रा में हमें ये जीवन में प्राप्त हुआ उतनी मात्रा में हम सुखी रहते हैं। अक्रोध, जितना गुस्सा कम आता है उतना आप सुखी हो, जितना अधिक आता है उतना आप दुखी हो।

धर्म, अर्थ और काम तीनों बंधन का कारण है। और बंधन ही नहीं हो तो मुक्ति की क्यों इच्छा करे कोई? मुक्ति की इच्छा तभी उठती ना जब बंधन महसूस हो। दौड़ता हुआ आदमी के लिए तकिया क्या जरूरत है? तकिया लेके कोई दौड़े क्या? जो थक जाता है दौड़ दौड़ के, उसी को तकिया की जरूरत है, उसी को विश्राम करता है। सिराना लेके कोई दौड़े? जब तक तुम तुम्हारी दौड़ जारी है तब तक तुम्हारी मुक्ति की इच्छा कहां जागी? जब थकते हैं, दुखी होते हैं, बंधन महसूस करते हैं, तभी हम मुक्ति की चाह करते हैं, तभी मुक्ति की चाह हमारे भीतर उठती भी है। या होश से मुक्ति की चाह उठती है या दुख से मुक्ति की चाह उठती है। दुखी हो जाओ फिर छुटकारा चाहते हो, या होश में आ जाए व्यक्ति बोलता अरे भाई ये सब बहुत हो गया, आगे इससे तो दुखी मिलेगा, तो अभी हमको इससे मुक्ति चाहिए। अष्टावक्र गीता ऐसे वैसे के लिए नहीं, इसको कहता विहंगम मार्ग, माने उड़ता हुआ मार्ग है। जिनको मुक्ति की चाह जागी है उन्हीं के लिए है, जिनके जीवन में विवेक जाग गया है उन्हीं के लिए है। और जनक ऐसे योग्य राजा थे, योग्य शिष्य रहे, सुपात्र थे। अष्टावक्र को देखते ही उनको लगा ये ज्ञानी है, ये ब्रह्म ज्ञानी है। उनको महसूस हुआ कि मैं इनके पास अपना जिज्ञासा रख सकता हूं। कुछ बातें हर एक के सामने पूछा भी नहीं जा सकता है, पूछने से भी कुछ मिलता भी नहीं। जो उसके जानकार है उन्हीं से बात करते हैं। अच्छा पोथी पढ़ पढ़ के तो बोलने वाले बहुत होते हैं, उससे नहीं जिनके जीवन में उतरी है ज्ञान, अरे भाई वो तो महसूस होने लगता है। ये जो बोल रहे अपने दिल से बोल रहे हैं, इनके जीवन में ये बात उतरी है, ये समझ में आती है। बुद्धू से बुद्धू को भी समझ में आ जाती है।

मुक्ति की चाह तभी जगती है जब हम थक जाते हैं, जब हमने भोग लिया काफी। अब इससे छुटकारा चाहते हैं, जी भर के जी लिया जीवन।